0: अभी आप हिंदुस्तानी भक्ति संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत भजन सुन रहे थे। कलाकार थे नोनी दत्ता। हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी प्रस्तुत है श्यामा संगीत। कलाकार हैं सोहिनी राय चौधरी। तो लीजिए प्रस्तुत है श्यामा संगीत। कलाकार हैं सोहिनी राय चौधरी।
1: यू वर लिस्निंग टू भजन्स बाय आवर आर्टिस्ट नोनी दत्तो। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। Continuing the program, we now bring you Shyama Sangeet. Listen to Shyama Sangeet by our artist Sohini Roy Chowdhury. You are listening to Shyama Sangeet by our artist Sohini Roy Chowdhury.

0: अभी आप हिंदुस्तान भक्ति संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थी सोहिनी राय चौधरी। हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लिपि प्रस्तुत है श्यामा संगीत। कलाकार हैं अजित गोस्वामी। तुलिजे प्रस्तुत है श्यामा संगीत। कलाकार हैं अजित गोस्वामी।
1: You were listening to Shyama Sangeet by our artist Sohini Roy Choudhury. Concluding the program, we now bring you Shyama Sangeet by our artist Ajit Goswami. Listen now to Shyama Sangeet. Our artist is Ajit Goswami.

0: अभी आप हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम के तहत श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे अजित गोस्वामी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी भक्ति संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू श्यामा संगीत। आवर आर्टिस्ट वाज अजित गोस्वामी। दिस प्रोग्राम वाज अर्लियर रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 ऑन DTH Anytime, Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको सुनाएंगे पंडित दीनानाथ मिश्रा का ख्याल. राग है बैरागी भैरव. इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं हिरणमोय मिश्रा.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनीटाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. लिसन टू अ ख्याल इन द राग बैरागी भैरव. आवर आर्टिस्ट इज पंडित दीनानाथ मिश्रा. Accompanying him on the tabla is Pandit Sujit Saha, and on the harmonium is Hiranmoy Mitro.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप पंडित दीनानाथ मिश्रा से बैरागी भैरव पर ख्याल सुन रहे थे। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर थे हिरणमोय मिश्रा। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग बैरागी पर गोपाल चंद्र पाल से सुनवाएंगे रुद्र वीणा। इनके साथ पखवाज पर हैं परबाल नाथ।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग बैरागी भैरव। आवर आर्टिस्ट वाज पंडित दीनानाथ मिश्रा। Accompanying him on the tabla was Pandit Sujit Saha, and on the harmonium was Hiranmoy Mitro. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a Rudra Veena recital. Listen to the Rudra Veena in the Rag Bairagi. Our artist is Gopal Chandra Paul. Accompanying him on the Pakhavaj is Probal.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत रुद्र वीणा पर राग वैरागी सुन रहे थे। कलाकार थे गोपाल चंद्र पाल और पखवाज पर इनका साथ दे रहे थे परबाल नाथ। ये हमारे आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a Rudra Veena recital in the rag Bairagi. Our artist was Gopal Chandra Paul. Accompanying him on the Pakhavaj was Probal Nath. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH India Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल। कार्यक्रम में आपका स्वागत। स्वर है शास्त्रीय गायन, कलाकार है पंडित विनायक राव पटवर्धन। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग ललत पंचम सुनते हैं, विलंबित एकता निबद्ध रचना के बोल है मुरलिया गोपाल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है साथो यह जग भ्रम। सात संगत सारंगी मधुर खाडिलकर और तबला चंद्रकांत कामत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पंडित विनायक राव पटवर्धन द्वारा प्रस्तुत राग लत पंचम। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं तबला वादन। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं विनायक फाटक द्वारा प्रस्तुत तबले पर ताल मत्त ताल। आपके साथ हारमोनियम पर है प्रसन्न राजवाड़े और वायलिन पर है सुरेश गुजर। तो आइए सुनते हैं तबले पर ताल मत्त ताल, कलाकार विनायक फाटक।

धा धिंता कत्ती टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक ट

धा धागे धीना गीना तीना तकित धकित धागे धीना धागे तित धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धा धागे तित धा धागे तित धा धागे तित धा धागे तित धा धागे तित

Dagger,

0: का रागम चैनल है। प्रस्तुत है पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजाया राग बिहाग। आलाप के बाद विलंबित और द्रुतगत क्रमशः तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने।
1: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वी नाउ प्रेजेंट अ सितार रिसाइटल इन राग बिहाग बाय पंडित देबू चौधरी। द आलाप इज फॉलोड बाय विलंबित एंड द्रुतगत सेट टू तीन ताल। पंडित देबू चौधरी इज अकंपनीड ऑन द तबला by Rafiuddin Sabri।

0: अभी आप पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजाया राग बिहाग सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए धुन राग मांड। तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने।
1: यू आर लिसनिंग टू राग बिहाग प्लेड ऑन द सितार बाय पंडित देबू चौधरी। लिसन नाउ टू धुन राग मांड। द अकंपनीमेंट ऑन तबला इज प्रोवाइडेड बाय रफीउद्दीन साबरी।

0: अभी आप पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजाया धुन राग मांड सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी रफीउद्दीन साबरी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू पंडित देबू चौधरी प्लेइंग धुन राग मांड ऑन द सितार। ही वॉज अकंपनीड बाय रफीउद्दीन साबरी ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 247 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रागम 247 DTH चैनल। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन। कलाकार है आनंद भाटे। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग गुजरी तोड़ी सुनते हैं। मध्यलय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है आज मोरे मन लागी, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है बे गुन गुन गाई। सात संगत तबला माधव मोड़क और हारमोनियम राहुल गोड़े। तो आइए सुनते हैं आनंद भाटे द्वारा प्रस्तुत राग गुजरी।

थे आनंद भाटे द्वारा प्रस्तुत राग गुजरी तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे माधव मोड़क, हारमोनियम पर थे राहुल गोड़े। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं आनंद भाटे द्वारा प्रस्तुत राग पुरिया कल्याण। विलंबित रचना के बोल है आज सुबन और द्रुत रचना के बोल है बहुत दिन बीते। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं माधव मोड़क, हारमोनियम पर है राहुल गोड़े। तो आइए सुनते हैं राग पुरिया कल्याण, कलाकार आनंद पटेल।

आप सुन रहे थे आनंद भाटे द्वारा प्रस्तुत राग पुरिया कल्याण। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे माधव मोड़क, हारमोनियम पर थे राहुल गोड़े। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम काफी ठुमरी, तदुपरांत खंबाज ठुमरी. कलाकार हैं कृष्णाधर. आपके साथ तबले पर हैं तरुण रॉय और हारमोनियम पर हैं देवाशीष अधिकारी. तो लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम काफी ठुमरी, तदुपरांत खंबाज ठुमरी. कलाकार हैं कृष्णाधर.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present Hindustani Vocal Recital.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सर्वप्रथम काफी ठुमरी तदुपरांत खंबाज ठुमरी सुन रहे थे। कलाकार थी कृष्णा धौर। आपके साथ तबले पर थे तरुण रॉय और हारमोनियम पर थे देवाशीष अधिकारी। लीजिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी प्रस्तुत है पहाड़ी दादरा। कलाकार हैं कृष्णा धौर, तबले पर हैं तरुण राय और हारमोनियम पर है देवाशीष अधिकारी। तो लीजिए प्रस्तुत है पहाड़ी दादरा, कलाकार हैं कृष्णा धौर।
1: You were listening to Kafi Thumri followed by Khambaj Thumri. Our artist was Krishna Dhaur. Accompanying our artist on the tabla was Tarun Roy and on the harmonium was Devashish Adhikari. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, our artist this evening presents Dadra. Listen now to Pahari Dadra. Our artist is Krishna Dhaur. Accompanying our artist on the tabla is Tarun Roy and on the harmonium is Devashish Adhikari. Listen now to Pahari Dadra, our artist Krishna Dhaur. Repeat korbo.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप पहाड़ी दादरा सुन रहे थे। कलाकार थी कृष्णा धौर। आपके साथ तबले पर थे तरुण रॉय और हारमोनियम पर थे देवाशीष अधिकारी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू पहाड़ी दादरा। आवर आर्टिस्ट वॉज कृष्णा धौर। Accompanying our artist on the tabla was Tarun Roy, and on the harmonium was Debashish Odhikari. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं लय विन्यासम। इसमें पहले सुनिए विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन का मृदंगम वादन। उसके पश्चात हम सुनवाएंगे विद्वान श्री चिन्न वेंकट सुब्बैया का डोलू वादन। संगीत परंपरा में जन्मे विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन के पिता श्री जाता कृष्णय्य भागवतर पारंपरिक भजन संप्रदाय के गायक थे। उन्होंने अपना प्रारंभिक संगीत प्रशिक्षण अपने दादा जी के रामस्वामी भागवतर से प्राप्त किया। आपने सेलम श्री के कृष्णमाचारी से भी संगीत की शिक्षा प्राप्त की। आगे विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन पुदुकोटे संगीत परंपरा के कलेमामणि तिरुची श्रीयार तायमानवन से गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन 1987 में आकाशवाणी तिरुचिरापल्ली में बी हाई ग्रेड कलाकार के रूप में जुड़े। आज आप टॉप ग्रेड कलाकार के रूप में सेवारत हैं। आप बाएं हाथ से मृदंगम बजाने वाले एक अनोखे और विशिष्ट कलाकार हैं। आपने देश विदेश के अनेक संगीत समारोह में सुप्रसिद्ध कलाकारों के साथ संगत की है। आप संगीत सीखने में रुचि रखने वाले छात्रों को न केवल मृदंगम अपितु गटम कंजीरा और मोसिंग जैसे वाद्यों का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा आयोजित संगीत सम्मेलन, संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम आदि में भी अपनी प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को संगीत का रसपान करवाया है। विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन अनेक पुरस्कारों एवं उपाधियों से अलंकृत हैं। इनमें उल्लेखनीय है नादलय शिरोमणि, नाद द्वीप रत्नाकर, लय तिलकम आदि उपाधियां। आज के लय विन्यासम में आपके साथ संगत कर रहे हैं कंजीरा पर तेनकाशी श्री एच परमशिवम, गटम पर अंदनल्लूर श्री आर रंगनाथन और वायलिन पर धुन दे रहे हैं तिरुची डॉक्टर श्री आर गोविंदराजन। लीजिए सुनिए मिश्र जाति त्रिपुट तालम। नमस्कार, दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक विच फीचर्स लय विन्यासम। फर्स्ट अ मृदंगम रिसाइटल बाय विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन, फॉलोड बाय अ डोलू रिसाइटल बाय विद्वान श्री चिन्न वेंकट सुब्बैया। To begin with, listen to Mridangam rendition of Vidwan Selam Shri K. Srinivasan. Selam K. Srinivasan hails from a traditional family of musicians. His father, Shri Jata Krishnaya Bhagavatar, was a vocalist of the traditional Bhajan Sampradaya. He received initial training in music from his grandfather, Shri G. K. Ramaswamy Bhagavatar, and later from Mridangam Vidwan Selam Shri V. Krishnamachari. Further and advanced training was from Kalaimamani Tiruchi Shri R. Thayumanavan. A staff artist of Akashwani since the year 1990, Selam Shri K. Srinivasan is now a top grade artist of Akashwani Tiruchirappalli. Acclaimed for his unique Pudukote style of rendition, Shri K. Srinivasan has accompanied stalwarts of music in concerts and has imbibed and adopted various styles in his rendition. A distinctive left-handed mridangam artist, he has travelled extensively for his performances, especially for Akashwani Sangeet Sammelan, South Zone Hookups and National Programs of Music. He is the recipient of several awards and titles. Selam Shri K. Srinivasan also trains young artists in lyre intricacies in mridangam, ghatam, Kanjira and Morsing. In tonight's program, he is accompanied by Tenkasi Shri H. Paramasivam on the Kanjira, Andanallur Shri R. Ranganathan on the Ghatam. Violin refrain is by Tiruchi Dr. R. Govindarajan. Selam Shri K. Srinivasan will now play Mishra Jati Triputa Talam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे लय विन्यासम। कलाकार थे मृदंगम पर विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन। आपके साथ संगत कर रहे थे कंजीरा पर तेनकाशी श्री एच परमशिवम, गटम पर अंदनल्लूर श्री आर रंगनाथन, वायलिन पर धुन दे रहे थे तिरुची डॉक्टर श्री आर गोविंदराजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुचिरापल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया। इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक फीचरिंग लय विन्यासम यू जस्ट हर्ड मृदंगम रिसाइटल बाय सेलम श्री के श्रीनिवासन। ही वॉज अकॉम्पनीड बाय तेनकासी श्री एच परमशिवम ऑन द कंजीरा, अंदनल्लूर श्री आर रंगनाथन ऑन द घटम। Violin refrain was by Tiruchi Dr. R. Govindarajan. The program was recorded in the studios of Akashvani Tiruchirappalli.
1: ये आकाशवाणी है। आज रात के राष्ट्र संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं श्री वी चिन्ना वेंकट सुबैया द्वारा तविल लय विन्यासम।
2: This is Akashvani. In tonight's national program of music, let us now listen to the Tavil Lai Vinyasam by Sri V. Chinna Venkata Subbaya.
1: Sri V. Chinna Venkata Subbaya Akashwani Hyderabad ke A grade tavil kalakar hain. Unki sangeet yatra ka prarambh varsh 1990 mein unke pratham guru Sri V. N. Lakshmi Narayan ke margdarshan mein hua. Baad mein unhone Sri Yalluru Sri Nivasulu tatha Sri Tirukadeyur T. G. Babu se prasikshan aur margdarshan prapt kiya. वर्ष 2018 में उन्हें तेलंगाना राज्य के श्रेष्ठ नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया और वर्ष 2019 में कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में तविल वादन के लिए उन्हें डोलू कला सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। वर्तमान में वे श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर यादागिरी गुट्टा में डोलू कलाकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें डीडी यादगिरी पर प्रसारित नाद स्वरम कार्यक्रमों में तविल पर संगति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने देश भर में अनेक संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया है। अपनी निरंतर साधना, समर्पण और गहन अनुभव के साथ श्री वी चिन्ना वेंकट सुब्बैया पारंपरिक भारतीय संगीत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आज रात के इस कार्यक्रम में आपके साथ नाद स्वरम पर संगत करने वाले कलाकार हैं श्री लोडगु वासु।
2: श्री वी चिन्नवेंकट सुब्बैया इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी हैदराबाद। हिज म्यूजिकल जर्नी बिगैन इन द ईयर 1990 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज फर्स्ट गुरु श्री वी एन लक्ष्मी नारायणन। लेटर ही रिसीव्ड ट्रेनिंग एंड गाइडेंस फ्रॉम श्री येल्लूर श्रीनिवासुलु एंड श्री तिरुक्कडयूर टीजी बाबू। इन द ईयर 2018 he was honored with the eminent citizen award of Telangana state, and in 2019 he was conferred the title of dolu kala samrat for his tavil playing in the field of Carnatic classical music. Currently he is serving as a dolu artist at the Lakshmi Narasimha Swami temple in Yadadri. He has had the privilege of providing tavil accompaniment for the Nadaswaram programs broadcast on DD Yadagiri. He has participated

0: सुनते हैं श्री वी चन्ना वेंकट सुबैया द्वारा तविल लय विन्यासम, जो चतुरश्र जाति त्रिपुट ताल में निबद्ध है।
1: लेट अस नाउ लिसन टू द तविल लय विन्यासम बाय श्री वी चन्ना वेंकट सुबैया, सेट टू चतुरश्र जाति त्रिपुट तालम।

0: इसी के साथ राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रसारित श्री वी चेन्ना वेंकट सुब्बया के तविल लय विन्यासम का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नाद स्वरम पर आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे श्री लोडुगु वासु। यह संगीत कार्यक्रम राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपके लिए प्रसारित किया गया।
1: विद दैट वी कंक्लूड द तविल लय विन्यासम by Sri V. Chennavenkata Subbaya in the broadcast of National Program of Music. He was supported on Nadaswaram by Sri Lodugu Vasu. This concert was recorded in the studios of Akashwani Hyderabad for National Program of Music and brought to you from the Delhi station of Akashwani.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में खयाल गायन. कलाकार हैं उस्ताद मशकूर अली खां. राग है विभास. विलंबित खयाल एक ताल में निबद्ध है. बंदिश के बोल हैं अरे पल झप गई. द्रुत खयाल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं भोर भई जग आए. संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर नजर हुसैन. ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1990 में की गई थी. This is Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel. Now listen to a Hindustani khayal recital by Ustad Mashkoor Ali Khan. The rendition commences with the rag Vibhas. The accompaniment has been provided by Ismail Daddu Khan on the tabla and Nazar Hussain on the sarangi. This was recorded in the year 1990.

आप सुन रहे हैं ख्याल गायन, कलाकार हैं उस्ताद मशकूर अली खान। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय उस्ताद मशकूर अली खान। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग मालकौंस। विलंबित ख्याल झूमरा ताल में निबद्ध है, बोल हैं कृष्ण माधव राम। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं मूरख मन मेरे। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग मालकौंस।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी ख्याल गायन, कलाकार थे उस्ताद मशकूर अली खां, संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां, सारंगी पर नजर हुसैन और हारमोनियम पर वहीद उस्मानी। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय उस्ताद मशकूर अली खां। द अकॉम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला, नजर हुसैन ऑन द सारंगी एंड वहीद उस्मानी ऑन द हारमोनियम। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन. कलाकार हैं विदुषी जरीन शर्मा. राग है बसंत मुखारी. आप प्रस्तुत कर रही हैं आलाप जोड़ झाला तत्पश्चात दो गतें. विलंबित गत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में. संगत कलाकार हैं तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा. द रेंडेशन कमेंसेस विद द राग बसंत मुखारी. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला.

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार हैं विदुषी जरीन शर्मा। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे विदुषी जरीन शर्मा से राग जोग में आलाप जोड़ और छाला, तत्पश्चात विलंबित और द्रुतगत। विलंबित गत झपताल में और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा, यू विल लिसन द राग जोग।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थी विदुषी जरीन शर्मा। संगत कलाकार थे तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित गोपाल कृष्ण का विचित्र वीणा पर बजाया राग दरबारी. विलंबित गत छप ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ विचित्र वीणा रिसाइटल इन राग दरबारी बाय पंडित गोपाल कृष्ण. द विलंबित गत इज सेट टू झप ताल एंड द्रुत गत इज सेट टू तीन ताल. ही इज अकंपनीड बाय नवाब अली ऑन द तबला.

0: अभी आप पंडित गोपाल कृष्ण का विचित्र वीणा पर बजाया राग दरबारी सुन रहे थे और प्रस्तुत है राग श्याम कल्याण। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली ने।
1: यू लिसनिंग टू अ विचित्र वीणा रिसाइटल इन राग दरबारी बाय पंडित गोपाल कृष्णा। वी नाउ प्रेजेंट राग श्याम कल्याण। द विलंबित एंड द्रुतगत इज सेट टू तीन ताल। ही इज अकंपनीड बाय नवाब अली ऑन द तबला।

0: अभी आप पंडित गोपाल कृष्ण का विचित्र वीणा पर बजाया राग श्याम कल्याण सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ विचित्र वीणा रिसाइटल इन राग श्याम कल्याण बाय पंडित गोपाल कृष्णा। ही इज अकॉम्पनीड बाय नवाब अली ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं उत्तरा केळकर के स्वर में संत बहिणाबाई की ये भक्ति रचना।

संत बहिणाबाई की यह भक्ति रचना अभी आपने सुनी उत्तरा केड़कर के स्वर में। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना सुनते हैं श्रीकांत पारगावकर के स्वर में, जिसके रचयिता हैं बाभ बोरकर।

बाबा बोरकर ने रची ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी श्रीकांत पारगावकर के स्वर में। कार्यक्रम के अगली भक्ति रचना ये सुनते हैं भागवत गौरी के स्वर में। ये रचना है संत एकनाथ महाराज की।

0: sa ka sa deva bhakta kala
1: संत एकनाथ महाराज की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी भागवत गौड़ी के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सुमन मते के स्वर में संत जनाबाई की ये भक्ति रचना।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के स्वर में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना आइए अब सुनते हैं गीता दाता के स्वर में कृष्णकांत नांदगांवकर की ये भक्ति रचना, जिसे संगीतबद्ध किया है विजय पवार ने।